0: 75 437 264 31 75.
1: 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175. Thank you so much, Sanj.
0: Thank you, ji, bahut bahut.
1: Very good. So, program mein pe jab hi rahe the, kya baat hai ne? Very good, very good. Ek na Eagle truck tire and alignment center hai. Truck di alignment, truck de nove tire, truck da oil change, truck di koi bhi repair. Inna di nove location khulli hai, 10874 Steels Avenue East. Steel te James Snow Park with a corner hai. ग्रैंड ओपनिंग लिए वे वे डिस्काउंट ने नंबर है 6472346293 नंबर है 6472346293 जिन्हें जिन्हें ने अपनी डैक की रिपेयर करवानी है फेंस की रिपेयर करवानी है नंबर नोट करो या कोई नवी डैक नवी फेंस लगवानी है बहुत ही रीजनेबल रेट के विच तां फोन नंबर है 6478043220 जॉब की जानकारी देनी है थोड़े कोई भी मित्र सज्जन ने किसी नूं भी कंस्ट्रक्शन का काम चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर की तो जॉब की भाल चो नंबर नोट करो कंस्ट्रक्शन वर्कर इन्हों चाहिए ने तुसी जैग भाजी नूं कॉल करो फीनिक्स मिलवर्क इन्हों की कंपनी है फीनिक्स मिलवर्क तो जैग भाई का नंबर है 4168222239 छड्या अगले गीत की रिक्वेस्ट थोड़े विचों कोई करूंगा बट चक दो फटे रिक्वेस्ट वाली अज फ्राइडे नूं किरा बस मैं कहना कि गल बन जाओ गल बन जाए नंबर है 905-673-3337 अपना 905-673-3337 905-673-3337 ते फिर जिमें कहोगे उवें रिक्वेस्ट पेश करते हैं तो ऑलरेडी समा भी अपना भजया भजया भजया जा रहा बई सो प्रोग्राम पंजाबी लहरा 905-673-3337 अपना फोन नंबर है बई जे तुसी किसी बिल्डर दी अग्रीमेंट दे विच फस चुके हो तुसी घर ले लिया हुण थोड़े तो घर क्लोज नहीं हो रहा थोनू डर है कि यार बिल्डर तो साढ़े मगर आऊगा सानू डिपोजिट तक नहीं मोड़ना फिक्र ना करो कॉल करो तुसी जे गिल होरां नू कैनेडा बिल्ड रियल एस्टेट एडवाइजर्स दे नाल इह थोनू गाइड करनगे कंसल्ट करनगे टॉप दे वकीलां नाल काम करदे आ ते थोनू बिल्डर दिया अग्रीमेंट्स चों छुटकारा दवाउंदे ने इन्होंने बड़े लोगों की मदद की है बिल्डर दिया अग्रीमेंटा कैंसल करन दे विच डिपोजिट भी इन्होंने बड़े लोगों का मंडवाया थोड़ा भी डिपोजिट मंडवा सकते हैं एक बार कॉल करके अपना सिचुएशन डिस्कस करो बिल्डर तो प्रॉपर्टी लै ली हुण क्लोजिंग नहीं हो रही तुसी फस चुके हो एक बार इन्हों फोन कर लो इन्हों मिलन का कोई कॉस्ट नहीं नंबर है 6477161987 6477161987 जे गिल कैनेडा बिल्ड रियल एस्टेट एडवाइजर 647-716-1987 नंबर है जी 1401 हेलो
2: सत्या
1: जी किदा
2: ठीक
1: है बन दिया
2: अपने जैदी भी ला दो यार
1: वाह बनी ना गल हम थोड़े भंगड़ा पाइए थोड़े हां
2: हां बिलकुल
1: जैजी बी क्या बात है आ जाओ फिर

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम बहुत कमाल का चल रहा है, शामें इतनी खूबसूरत होती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आप सभी कहीं ना कहीं वॉक करने जाते होंगे या कुछ ना कुछ समर में बाहर निकलते होंगे, थोड़ी देर के लिए ही सही, 5-10 मिनट के लिए ही सही। जैसे भी आप जरूर कोशिश करें, चाहे अपने घर के आगे ही कुर्सी में बैठें, लेकिन जरूर बाहर निकलें, ठंडी हवा लें। सर्दियों में तो फिर हम अंदर ही घुसे रहते हैं। अब इसी विचार के साथ आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो और बढ़िया बैक यार्ड आपको फर्नीचर चाहिए, बढ़िया बारबेक्यू चाहिए और आपको टीवी लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको स्पेशल्स मिल जाएंगे। अभी आपने अपनी बहन को राखी के लिए बढ़िया सा टीवी लेके देना है, पहले से ही ऑर्डर कर दो, या और कोई घर की बढ़िया गैजेट्स लेके देनी है तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में, ब्रैम्पटन में और ग्वाल्फ में दो लोकेशन है उनकी। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर उनकी स्पेशल देखो, फिर अपना ऑर्डर बुक करो 905-799-0045। अगर आपको मूव होना है तो मूव होने के लिए एचके मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं। एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो 416-524-8004 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव बुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट भी ब्रिटानिया पे मौजूद है, मिस्सी सागा में। आप उनका ऑर्डर बुक करने के लिए 905-814-1730 पर कॉल करो, 905-814-1730। न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना है, बेचना है, नसीब थिंड को कॉल करिए 519-546-1260। तो आशा भोसले, उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, तो आप उन्हीं का ये बढ़िया सा गीत आपको सुनाती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल।

तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको गाना पसंद आ रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और साथ साथ आप बढ़िया बढ़िया टीवी लेना है आपको लेटेस्ट डिज़ाइन का, और बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यूज चाहिए, किचन के गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए 905-700-045-7990-045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो मूविंग के लिए आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स आपके लिए, उनकी बहुत सारी टीम है और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। आप उनको अभी कॉल कर लीजिए 416-524-804 अपने ट्रक बुक कीजिए और आप अपनी मूविंग का प्रबंध कर लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। मूविंग इज़ नॉट ईजी, इज़ वेरी हार्ड, पर अब आपके लिए ये सारी चिंता दूर करेंगे HK मूवर्स वाले। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे आपको बहुत बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पे जाइएगा आपको बहुत बढ़िया। आजकल समर है, आपकी पिकनिक होने वाली है, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए और वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सारा कुछ मिठाइयाँ, खाना बहुत बढ़िया मिलेगा।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब आपके लिए जो इस साल के गुप्त नवरात्रि होते हैं, नौ देवियों की पूजा की जाती है, तो वो 16 जुलाई से 23 जुलाई तक थे इस साल। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी ने, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, आपने जरूर मनाए होंगे। और आजकल गर्मियाँ हैं तो सभी मंदिरों में कथाएँ हो रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को जरूर लेके जाइएगा। और अभी 3 दिन का ये मेला होने वाला है, जुलाई 24, 25, 26, यहाँ पे मिसिसागा में जो स्क्वायर वन का जो स्क्वायर है उनका, तो वहाँ पे 3 दिन का मेला होने वाला है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com और उनको आप कॉल कर सकते हैं 905-799-0045 पर। आप कॉल करके अपने ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो ये अब आपको मुकेश जी का गीत सुनाते हैं। मुकेश और लता जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, तो हमने तो उनके उस ज़माने में 70s में यहाँ पे शो हुआ करते थे और सुभता जी उनके शो करवाया करते थे, तो उसी तरह के हमें याद है, उनकी यादें हमारे दिल में हैं। तो आइए आपको एक प्यारा सा उन्हीं का गीत सुनाते हैं। आजकल मौसम बहुत बढ़िया है, तो मौसम के ही बारे में गीत सुनाते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हो 6477737604 कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। तो ये जो गाना है बहुत ही रोमांटिक सा है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेट्स गो टू जितेंद्र और नंदा के ऊपर ये फिल्माया गया था उस ज़माने में, और उस ज़माने की अगर आप कोरियोग्राफी देखो ब्लैक एंड वाइट में भी कमाल की आपको नज़र आती है। तो इसमें भी आपको अगर मौका मिले तो, बड़ा गांव का सीन है तो बहुत ही प्यारा सा है। धरती कह पुकार के 1969 की फिल्म।

जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है। कई बार किसी से इतना प्यार हो जाता है, इतना रिलेशन हो जाता है, तो उसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जरूर कोई बंधन है और गुप्त सा बंधन है। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स को अगर आप कोशिश करो तो जरूर आपको दुनिया में मिल जाते हैं ऐसे रिश्ते। तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे, रात को 10 से 11 बजे भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। उनकी बहुत सारी टीम है, तो बहुत बढ़िया आपको सर्विसेज देते हैं, आपका सामान हिफाजत से पहुँचा देते हैं। अगर आपको मूव होना है तो आप कॉल कीजिएगा, आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-804-1652-46704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ लेनी है, लड्डू जलेबियाँ समोसे, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री आपके लिए बहुत बढ़िया उनका सामान होता है, क्योंकि उनका टर्नओवर बहुत है, तो एकदम फ्रेश आपको सारा सामान मिलता है। तो आइए अब आपको ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं, ये भी बड़ा सुंदर गीत है, मोहम्मद रफ़ी और लता जी के बारे में, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया था। मैं कोशिश करती हूँ आपको भूले बिसरे गीत सुनाऊं।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। बिल्कुल सही है कि ना बीते जय रात के हम मिलते नहीं रहे, उम्मीद रखती हूँ इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। अगस्त 94 में 95 में ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, तो आज तक हमारी आवाज़ जो हमारे स्पॉन्सर हैं उन्हीं का ये साथ है, तो हम आगे हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो आइए अब आपको एक पंजाबी का गीत भी ज़रूर सुनाना चाहिए ना, क्यों आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। सो कैसे होता है कि कोई चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, लेकिन प्यार में कमी नहीं होती है कई बार, क्योंकि दिल में कोई बस जाता है तो फिर वो उसको दिल से आप निकाल तो सकते नहीं, कुछ ऐसे रिश्ते ज़िंदगी में बन जाते हैं, तो उसी के बारे में गीत है। सो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये गाना पंजाबी का है, पुराना ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का है, पर बहुत मेरे दिल के बड़े नज़दीक हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम

का समय समाप्ति पर है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक राम चढ़दी का तेरे पाने श्रद्धा पला है वंडरफुल डे, और शाम को 10 से 11 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो सचो सचा नाओ गुण गोविंद है जियो जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो सचो सचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिरजे तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सकै कोई आपे कर विखै सिर सिर लिखै आपे सुरत बुझाई नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर न कोए आया जायसी जियो हुक्मे हुए निबेड़ परम चुकायसी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप उपाए आप समाए हुक्मे हुक्म पछाणा सच्ची वड्याई गुरते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर न दूजा नाम तेरा वड्याई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह वाद वदंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म न बूझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सिंजापै सचा सिरजनहारा भगत सोह हे दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण
रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए, गुर कै शब्द विकाणे, पारस परसे पारस होए, जां तेरा मन पाणे, अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहन दर साचा, साचे के वापारी, भूख प्यासो आथ क्यों दर जाय सा जियो।

आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी, करनी कार तुरहु फुरमाई, आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला।

नाम तेरा, कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे, एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर एंड थोड़े सब का स्वागत कर दिया अपने शो रेडियो आवाज़ ते, ते असी थोड़े नाल एक बजे तक इंज ही जुड़े रहांगे, ते तुसी सारे साढ़े नाल साडा शो इंजॉय करो।

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 90545126000.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: आप बैकग्राउंड क्या रहा आपका?
1: के पहले 2003 पास आउट।
0: अच्छा, मेरे को एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमने एड शुरू करना है
1: जी,
0: हम केरला का ही मसाज करते हैं ना, ऐसे कुछ है ना। तो मैं मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, ब्रिजी सर नाल कर रहे हैं।
1: थैंक यू।
0: तो ब्रिजी भी इन्हें साल तो कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मैं कहे मदद भी कर रहे हैं, नाल अपना घर भी चला रहे हैं। So, मैं ब्रिजी, आपके पास कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनके आप ऑयल को, जिनके आप जो पेस्ट को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं?
1: जी, हमारे साथ अलग अलग ऑयल है, महानारायण तैलम, क्षीरबला, धन्वंतरम, मुरिवेन्ना, पूरा ऑल काइंड्स ऑफ कर्पूर आदि, ये सब है। हाँ, कर्पूर आदि।
0: कर्पूर आदि का क्या काम होता है?
1: इट्स फॉर द पेन के लिए, सब पेन के लिए जी।
0: अच्छा।
1: हाँ, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट ऑयल है।
0: डिफरेंट ऑयल।
1: हाँ।
0: सो ये पेन खत्म करते हैं। सो जीना दे किसी दे मोड़े च तौण च कीला हैगा गर्दन च, संतोष जी?
2: हाँ जी,
0: संतोष जी तो रेडी सुनने के लिए। अच्छा, सो जीना दे तौण च कीला, गर्दन च कीला फसया होया, जिन्हां दे माइग्रेन वाला कीला कहना
2: जी, बिल्कुल
0: आकड़ वाला नहीं।
2: हाँ जी।
0: सो जिन्हां दे दर्द ने सिर दे विच, माइग्रेन आ, हाफ पेन है, नहीं बंद होंदियां तुहाडियां इह दर्द, तुसीं ब्रिजी कोल जरूर पहुंचना। बॉडी नूं ब्लड सर्कुलेशन दा इक
1: इंप्रूव करो
0: और ब्रिजी नूं कॉन्टैक्ट करो। ब्रिजी नंबर किन्ना?
1: 6476191369।
0: कितनी अपॉइंटमेंट्स आपके पास?
1: लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल टुडे एंड टुमारो, आज और कल भी है,
0: आज और कल,
1: लेडी एंड जेंट,
0: लेडी एंड
1: दोनों के लिए।
0: औरतों के लिए लागे ना कुल दो कुड़ियां कम कर दिया ने, बहुत वधिया ने, वो भी केरला तो होम्योपैथिक, सॉरी
1: आयुर्वेद
0: डॉक्टर है। दूसरा ब्रिजी भी तुहानू जिहड़ा योगा ट्रीटमेंट्स और शिरोधारा
2: मेडिटेशन,
1: मेडिटेशन
0: और भी करता हूं,
1: सारे
0: जिन्हें भी तुसी सुनते पे हो, अपने शरीर नूं तोहफा दो, अपनी बॉडी नूं तोहफा दो, अपने आप नूं प्यार करो, ते ब्रिजी नूं प्यार करो
1: जी। हरिदा केरला आयुर्वेद एंड योगा सेंटर, 6476191369,
0: 6476191369 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ।

0: सो मेरा शुभानु है हुसना दे माल को सताया ना कर। शुभानु जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया अमन भाई, आप बताएं।
0: बस बढ़िया शुभानु जी, पहले सबसे आपका नंबर पंजाबी में बोल दो।
1: 416-206-3200।
0: शुभानु पंजाबी मुंडा तुहाडा हाजिर है। शिवानु सब तो वधिया लगता मैनू थोड़े काम करन दा स्टाइल।
1: थैंक यू।
0: नंबर टू थोड़े दोस्तां दूसरे नाल कम्युनिकेशन
1: जी।
0: नंबर तीन मैनू थोड़ी डिलीवरी बड़ी अच्छी लगती है
1: जी।
0: ऑन वर्ड्स ऑन टाइम, जो कह दिता उस समय दे विच कर दिता। ते शिवानु एक ऐसा नाम है जो अपने जो किते नू इश्क करदा है, प्यार करदा है, पैशनेट अबाउट हिज इंडस्ट्री, ते कुछ होर नहीं करदा, विंडोज ही लाउंदा, विंडोज एंड डोरस। जे थोड़ा दरवाजा भन के कोई अंदर आ जाए, शिवानु कहिंदा मैं पैसे वापस दे दूंगा जे मेरा दरवाजे दे जोड़ टुट जाण, बुला के तड़वा लियो किसी तो। नंबर टू, जे साडी विंडो जिहड़ी स्पैशल ग्लास वाली सी लाउने ग्राउंड फ्लोर दे उत्ते, उहनू कोई 15 या 20 मिनट तो पहला तोड़ लवे, 15 तो 20 मिनट लगणगे तोड़न नू, तुसी 911 डायल कर दो, 5 मिनट च सर्विस आ जांदी तुहाडे दरवाजे ते। 15 तो 20 मिनट पहला तोड़ के कोई अंदर बढ़ जाए घर च, तो असी पैसे वापस दे देवे। साढ़े जोड़े लॉक ने जर्मन टैक्नोलॉजी, दुनिया की सब तो बेहतरीन टैक्नोलॉजी, चोर का गोडा टुट जूगा, थोड़ा दरवाजा नहीं टुटूगा, एवें नहीं असी स्लोगन बनाए। राइट विंडो फोर्स कंपनी का नाम है जिड़ी कहती है कि पैसे नहीं है, असी बैठे हाँ थोड़ी तो सेवा दे। राइट विंडो फोर्स जी कहती है कि जिन्ना बिल तुम एनर्जी तो एक्सट्रा पे कर रहे हो, एसी का जोर लग रहा, बाहरली गर्मी अंदर वालों रुकती नहीं पई, तो सर्दियों ठंड अंदर धड़ा धड़ बढ़ रही है, तो फरनस बंद नहीं हो रही, उन्ने पैसों की किश्त के उत्ते असी थोड़ी मंथली इंस्टॉलमेंट बना दें, तो तुम कुछ क पैसे पे करके अपने विंडो इंस्टॉल कर लें। शिवानु अब आपके लिए बोलने को क्या बच गया ये बताओ।
1: मेरे पास कुछ नहीं अमन भाई, तुमने सारा कुछ बोल दिया।
0: हाँ शिवानु अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक ऐसी कंपनी है थोड़े घरे ना कागज पेन लेके विंडोज की एस्टीमेट देने नहीं आते, थोड़े घरे विंडो लेके आते हैं जिस टैंपरेचर ग्लास क्वालिटी लॉक्स, तो वह विंडो चुकवा के देखते हैं, हाथ ना चक के देखो, मेड इन चाइना माल नहीं असी ठोक के जाना, उत्ते स्टिकर लगे ने एनर्जी दे, लाइफ टाइम वारंटी, विंडो तुसी लाओ इंजॉय थोड़े बच्चे करनगे, 25 साल मिनिमम गारंटी देने प्रोडक्ट सैल कर दिया कंपनी राइट विंडो फोर्स। शिवानु जी नंबर किन्ना अपना?
1: 416-206-3200।
0: वो कहिंदा कि शाखा तुम मुझसे भाग नहीं सकते, पाताल तक भी भाग लो तो भी राका तुम्हारे पीछे आएगा, तुसी किसी भी शहर चो कॉल कर दो, तुसी राइट विंडो फिट तो भज नहीं सकते, राइट विंडो फिट तुहाडे शहर च आके तुहानू एस्टीमेट दे जाऊगा, किसी भी शहर चो कॉल करो, पेमेंट प्लान लवो, सैटिस्फैक्शन लवो। विंडो एक ऐसी चीज है लाने तो बाद बंदे ने फोन चकना बंद कर दिता, थोड़ी लाइफ हैल है 20,000, 15,000, 10,000 खर्चन तो बाद। 416-206-3200 नंबर है राइट विंडो फोर्स। शिवानु जी जाने से पहले कुछ और आप भी बोल दीजिए ना प्लीज।
1: सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आज तो आपने ही पूरा मतलब बढ़िया मेरा ऐड कर दिया, बट जो आपने बात बोली है तो सर आपकी भी एक इमेज है तो हम उसको साथ में कैरी करके चलते हैं, और लोग बहुत विश्वास रखते हैं कि अमन भाई ने बोला है तो वो बात सही होगी और हम उस पर पूरे खड़े उतरते हैं।
0: तो मैं भी कोशिश की थी शिवानु, मैं ऐड आई सी हूं पिछे, वो बंदे ने किसी पैसे ले काम नहीं किया, मैं कभी किसी का रेडियो से ना नहीं बोलता शिवानु कभी जिंदगी दे विच
1: जी,
0: ये बहुत अच्छा रूल है, पर्सनल चीजा रेडियो ते नहीं लेके आनी है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, कोई किसी ने नुकसान कर रहा है मैं उसकी ऐड बिल्कुल सच्ची मैं कहना, मैं नहीं कहता मेरे को बहुत कम आया है, मैं ऐड रोक देना एटलीस्ट मेरे करके किसी का नुकसान ना हो जाए, मैं भी उन्ना ही रिस्पोंसिबल है जिन्ना दूजा बंदा जिहड़ा काम गलत करके गया, पर मैं हरेक नूं मोनिटर नहीं कर सकता। इन्ना कह सकता किन्ने साल के शिवानु तुहानूं मेरे नाल ऐड कर दे?
1: ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे सर।
0: 3 साल हो गए, हजे भी वेयर हाउस च मेरी इहदी विंडोज पईआं ने जिहड़ियां मैं इन्हां तों बनवाईआं ने, किसी ने आके चेक करनी है आके चेक कर लिओ। 16,000-17,000 ਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਚਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ 416-206-3200, 416-206-3200। ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਸ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।

0: लहज बदल जाते हैं, खुद गर्जिश बढ़ने में दोस्त क्या खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं।
1: सही गल है वैसे, है ना, देख लो अपने रिश्ते भी ना एक बार तो मुंह मोड़ लेंदे जे कोई मना किसी दे बहुत कह लो की कोई डिफिकल्टी कोई माड़ा टाइम आ जाए, है ना।
0: लगया भी अपनी जिंदगी एदा ही चलती पई है सब।
1: हम
0: वफा कर ना सके।

0: हाय रब्बा हुण की बनू
1: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी तां याद रखो इको नाम बराड़ टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
2: इन्हां कोल है पंज धड़लेदार कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम
1: जो दवांदे ने वध तों वध लीगल सेटलमेंट नो अपफ्रंट फीस

0: आर्टिस्ट ड्राइव यूनिट 9 मिसिसागा।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच ते चूहे, ओ हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरे पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।

हाथ बोला जिया ला के ओदे वल मुंह घुमा के हाथ बोला जिया ला के ओ जदों अल्फ इश्क

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वापस आ गए हाँ जी शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो तुसी ठीरन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल। मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुशामदीद एंड स्वागतम।

7:14 हो गया जी। चलो AM 530 ते तुसी सुन रहे हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज़। मैं थोड़ी होस्ट परम थोड़ा साथ दे रही हाँ। अज का सवाल भी थानू पुछांगे, एक थानू सुनेहा होर दे दिए ते उस तो बाद फिर असी अपनी गलबात वाल चलांगे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस का सुनेहा दस दिए जी, अगर घर के अपलायंसिस चाहिए आ, तुसी नवे घर च मूव हो रहे हो या फिर अपने घर दे विच तुहानूं स्टोव चाहिदा, कल्ला फ्रिज चाहिदा, डिश वॉशर चाहिदा या फिर किचन दे पूरे अपलायंसिस चाहिए आ, ते तुसी जरूर जरूर जरूर पहुँचना जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस, जिहड़े कि चंक्यूजी एंड बोवेट दे इंटरसैक्शन ते लोकेटर ने ब्रैम्पटन दे विच। पहुँचो ते फ्रिज स्टोव डिश वॉशर तुहानूं ये घर भेज देंगे, फ्री डिलीवरी होएगी। पर जे अगर पैसे नहीं हैगे राइट वे तुसी पे नहीं कर सकते ते तुहानू 6 महीनों बाद तुसी पे कर सकते हो विदाउट एनी इंट्रस्ट, कोई व्याज तुसी पे नहीं करना ते तुसी 6 महीनों बाद पे कर सकते हो जी। तुसी जरूर एक बार अपलायंसिस टीवीज लैने हो तो ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस चंक्यूजी एंड बोवेड के इंटरसैक्शन के दहाकियां तो थोड़ी सेवा कर रहे हैं। 905-450-2828 905-450-2828 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर आपके दिलों पर दस्तक देने की इजाजत चाहता हूं, ताकि आपको आह के साथ वाह भी कहने के लिए अपनी पेशकारी के जरिए आपको मुतासिर कर सकूं। तो चलते हैं शेर व शायरी की अजीब दुनिया में, अजीब मुख्तलिफ रंगों में, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां का। राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो थोड़ा दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो, बाद में इसे जला भी देना। वैसे तो नशा बुरी चीज है, पर दानिश से शेर सुनना है तो थोड़ी पिला भी देना। बात पीने की चली है तो कहते हैं कि शायर दीवाने और रिंदों की सोच अजीब सी होती है, या यूं कहिए कि एक जैसी होती है। हाँ, रिंद जब पीता है तो फिर खुद के करीब होता है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही गजल, गुलुकार है जगजीत सिंह।

झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है, सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है। नाम तेरा है चंदन जैसा, दिल मेरा महका देता है। खारों के साए में भी देखो वो फूल खिला देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। चांद बड़ा है जालिम दानिश, उसकी याद दिला देता है। समीन, चांद को देखना किसे पसंद नहीं। चांद भी एक महबूब की तरह होता है, जिसको देखना तो मुमकिन है मगर पाना उतना ही नामुमकिन। तो बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूँ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।